0: And there is this cherry blossom ka ped.
1: हाँ pink.
0: हाँ. तो not only cherry blossom का color अलग है, ठीक है, मतलब बहुत अलग है. But उसके पत्तों का भी color अलग है.
1: Yeah. That's true.
0: मतलब उसके पत्तों पे भी कलर है बहुत सारे.
1: उस पत्तों पे ग्रीन कलर है, but that's a very different kind of tree.
0: हाँ, और अभी because वो भी झड़ रहे हैं, उनका भी कलर येलो मरून ऐसे हुआ जा रहा
1: है. नहीं, वो तो है, बहुत ब्यूटीफुल है. साउथ आइलैंड में ना एक जगह है.
0: साउथ आइलैंड में बहुत जगह है.
1: मतलब एक जगह है जहाँ पे इतने ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं. आई वॉज देयर लाइक few years ago, I was there during this time. April, May में मैं वहाँ पे थी और मुझे मतलब I took some photos and I fell in love with those photos because of the colors. So if somebody asks me what is your favorite season in New Zealand, I always say autumn. I know मतलब summer भी है but autumn is like because of the colors. I just love autumn.
0: हाँ. For me, autumn has been like very short, always.
1: Okay.
0: ठीक है, up until
1: नहीं short ही होता है ना.
0: हाँ, मतलब short, मतलब इतना short के मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि autumn exactly होता क्या है. ठीक है, क्योंकि being in Mumbai मेरे को इतना ज़्यादा कुछ दिखा नहीं था. या फिर मैंने ज़्यादा notice नहीं किया था. But यहाँ पे it's just different. Okay, and Pami mein there is a place, there is a street.
1: कहाँ पे?
0: Pami mein there is a street. Elmira Street.
1: Okay.
0: वो मेरा favorite street है.
1: अच्छा.
0: किसी ने मेरे को दिखाया था. कि ये एक street है, मतलब मैं packing से जा रहा था, flatmate के साथ जा रहा था, तो उसने मेरे को बोला था, मैंने तेरे को एक जगह दिखाता हूँ. मैंने कहा ठीक है, दिखा मेरे को. तो ऑन द वे टू पैकिंग से उसने वो एलमीरा स्ट्रीट से लिया.
1: अच्छा.
0: तो उसने मेरे को बोला कि ये वाला स्ट्रीट ना मेरा एकदम फेवरेट स्ट्रीट है.
1: अच्छा.
0: मैंने उसको पूछा कि क्यों, तो उसने बोला कि तू अब देखेगा तब तेरे को खुद पता चलेगा. सो दैट्स वन स्ट्रीट जहाँ पे दोनों साइड पे सेम पौधे, सेम पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, और वो दोनों साइड से ऐसे एक टनल बनाते हैं.
1: अच्छा.
0: ओके. नाउ द थिंग इज, ऐसा तो बहुत सारी जगह,
1: बहुत सारे जगह
0: पे
1: ऐसा तो इंडिया में भी काफी जगह पे हमने देखा
0: है. हाँ, लेकिन ये वाले स्ट्रीट पे ना पता नहीं क्यों इट फील्स सो सिमेट्रिक.
1: ओह वाओ. हाँ,
0: दोनों साइड पे पौधे ऐसा लगता है कि इट इज सिमेट्रिक. एंड नॉट जस्ट दैट, इट कुड बी द ट्रीज, इट कुड बी समथिंग एल्स और व्हाटएवर. हमेशा ऐसा लगता है कि जो पत्तियां है ना, दे आर ग्लोइंग.
1: Glowing.
0: हाँ, ऐसा नहीं लगता है कि sunlight is passing through the leaves. ऐसा नहीं लगता.
1: Wow.
0: ऐसा लगता है
1: कि वो. So it becomes a canopy kind of thing.
0: It becomes a canopy.
1: Yeah.
0: और मेरे को नहीं पता कि वो street में क्या special है या फिर वो पेड़ों में क्या special है. But it looks very nice.
1: जब मैं पहली बार New Zealand आई थी ना, तो मैंने Christchurch में land किया था. And then I flew to Wellington and then I came to Pami, of course. तो मैं जब पामी आई और बाकी जगह पे नहीं सोच रही थी यार, ये मतलब कोई जगह कोई पेड़ के पत्ते इतने साफ कैसे हो सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता होता कि ये लोग रोज सुबह पानी डालते होंगे, मतलब ऐसा ना पानी छिड़कते होंगे, करते होंगे. But I saw there is nothing like that. It is the environment because it is so clear. It is so clean. It is so beautiful. So, वो जो ग्रीन एंड क्लीन का जो है ना न्यूजीलैंड का, तो इट्स क्वाइट एप्ट.
0: जब मैं आया था, सो दैट वाज द 17th ऑफ फेब्रुअरी.
1: वाह, डेट भी याद है सर को.
0: हाँ, डेट भी याद है. नहीं, एक्चुअली सॉरी, 15th ऑफ फेब्रुअरी.
1: अच्छा.
0: सॉरी, 15th ऑफ फेब्रुअरी वाज द डे एंड 17th ऑफ फेब्रुअरी वाज द फर्स्ट डे जब मैं यूनिवर्सिटी में एंट्री किया था. मैं मेन रोड से एंट्री किया था, जिधर वो लेफ्ट साइड पे स्टोन
1: पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, मेसी यूनिवर्सिटी,
0: वो वाला रास्ता. ये

0: एग रिसर्च के ऑपोजिट वाला, वहाँ से मैंने एंटर किया था. दैट वाज द 17th. बट 15th को जब भी मैं पहुंचा था, तब जस्ट लाइक यू मैं पहले क्राइस्टचर्च आया. ठीक है, क्राइस्टचर्च से कलेक्टिंग फ्लाइट था मेरा पामी का.
1: अच्छा, तेरा सीधा पामी.
0: हाँ, तो मैं क्राइस्टचर्च पे उतरा और जैसा कस्टम्स क्लियर हुआ तो ग्राउंड फ्लोर पे आया मैं. ठीक है, फिर मैंने बोला कि कनेक्टिंग फ्लाइट किधर है, तो आई हैड टू गो अपस्टेयर्स. मैं ऊपर गया और मैंने बोला कि मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहता. मेरे को बहुत भूख लगी थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं नहाऊं. मेरे को लग रहा था कि मैं अभी अभी मैं फ्रेश होना चाहता हूँ, अभी मेरे को कुछ खाना है और मेरे को सोना भी है. बट मैंने बोला कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ना वॉशरूम देख रहा हूँ, ना कुछ भी देख रहा हूँ, ना मैं कुछ खाना देख रहा हूँ. मैं पहले जाके अपने गेट पे जाके बैठता हूँ. सो इट वॉज अपस्टेयर्स एक लेवल पे, और वो जहाँ पे मेरा गेट था वो है मतलब टर्मिनल में एक गेट है जहाँ पर एक ऐसी फ्लोर टू सीलिंग ऐसा ग्लास है. Okay. और वहां से आपको एयरप्लेन दिखता है. ठीक है, रनवे दिखता
1: है. यू कैन सी दैट.
0: हाँ, बट मतलब ऐसा ना वाइड नहीं था, इतना एक्सपांस नहीं था, वो पतला सा ही था. और तब हो रही थी बारिश, ओवरकास्ट था, बारिश थी. और तभी मेरे को पहली बार लगा कि मैं ऐसी जगह में आया हूँ जहाँ पे वेदर हमेशा ऐसा ही रहता है, हमेशा ओवरकास्ट रहता है, हमेशा बारिश होती रहती है, हमेशा ग्लूमी उमी सा रहता है.
1: ओह माय गॉड, दैट इज डिप्रेसिंग.
0: हाँ, मैंने बोला कि यार मैं अभी मतलब 8 घंटे पहले, 8-10 घंटे पहले मैं चेंगी भी था. ठीक है, जो मजे किए मैंने एयरपोर्ट बटरफ्लाई देखे, पॉड्स देखे, टर्मिनल देखे, जूल देखा, खाना खाया, घूमा मस्त. और सनी, एवरीथिंग वाज सनी. फिर मैंने एयरपोर्ट पे ये नज़ारा देखा वेदर पे. मैंने बोला कि ओके, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जो सनलाइट ग्रीन और वो सब कुछ है ना, वो इधर कुछ दिखने वाला ही नहीं, इधर मेरे को सब कुछ ग्रे दिख रहा है. यहाँ पे मेरे को सब कुछ वाइट, ग्रे, ब्लैक यही दिख रहा है. कोई अगर मेरे को तभी कहता कि तेरे को ये जो सीन दिख रहा है ना, दिस इज जस्ट वन पैलेट, दिस इज वन जस्ट वन
1: पैलेट, वन पैलेट करेक्ट,
0: और तेरे को इतने पैलेट मिलेंगे कि तू खुद डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, मैं शायद नहीं मानता उसको. बट आई एम रियली हैप्पी कि
1: मेरे को,
0: हाँ, कि मेरे को ऐसे देखने को मिलता है. जब भी रेंगेटी की स्ट्रीट से अपन फील्डिंग की तरफ जाते ना,
1: हाँ, हाँ.
0: तो जब भी शाम के टाइम में सनसेट दिखता
1: है, ओहो हो,
0: तभी वो रास्ता देखने का
1: बहुत अच्छा है. वहाँ पे कभी कभी ड्राइव करने में इशू होता है क्योंकि सन एकदम सामने आ जाता है.
0: But then you have to observe the colors.
1: I know, beautiful. और एक और बात बतानी है मुझे तुझे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट एक गाना चला दे पहले.
0: अच्छा. आज ओके, ठीक है, मैं शुभ का गाना बजाता हूँ.
1: किसका?
0: शुभ.
1: शुभ.
0: शुभ.
1: हाँ.
0: आर्टिस्ट है.
1: आर्टिस्ट है.
0: पंजाबी गाने गाता.
1: ओके, बजाइए.
0: ठीक है, उसका गाना बजाता हूँ. आई थिंक फेल फॉर यू. ठीक है, चलो सुनते.
1: फेल फॉर यू.
0: फेल फॉर यू.
1: वाह, ये तो इंग्लिश के आर्टिस्ट लग रहे हैं.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये कुछ पंजाबी गानों का ये इट्स अ थिंग कि
1: एक लाइन इंग्लिश की गुस्सा दो.
0: वो नहीं, वो तो होता ही है. बट गाने का टाइटल इज इंग्लिश.
1: अच्छा. बट गाना पूरा पंजाबी.
0: गाना पूरा पंजाबी है.
1: ठीक.
0: जैसे करण औजला का गाना, गाने का नाम है, गाने का टाइटल है बॉयफ्रेंड. बट गाना शुरू होता है अबाउट अ गर्ल बीइंग सैट डाउन बाय हर पेरेंट्स और वो उसको लड़कों की फोटोज दिखा रहे हैं.
1: अच्छा.
0: कि ये पसंद आया क्या, वो पसंद आया क्या, वो पसंद आया क्या. एंड द एंटायर सॉन्ग इज दैट गर्ल सिंगिंग टू हर मदर एंड फादर एंड एवरीबॉडी दैट

0: I have a, I like someone.
1: अच्छा.
0: इसीलिए गाने का नाम है boyfriend.
1: Boyfriend.
0: ठीक है English. And then, अच्छा. Then Shubh Garg. There's one song. मुझे पसंद है. मुझे काफी पसंद है.